0: स्वामी, मेरी जिंदगी हमेशा बड़े सपनों से नहीं बनी है, अक्सर ये उन छोटे लम्हों से जुड़ी हुई है जिन्हें महसूस करके अपनाया गया। मेरा जन्म यही पुट्टपर्ती में आपके ही जनरल हॉस्पिटल में हुआ था। मैं एक प्रीटर्म बेबी थी और मेरा वजन सिर्फ 750 ग्राम था और मुझे इंक्यूबेटर में रखा गया। हर दिन मेरे पापा स्वामी के दर्शन के लिए बहुत प्रयास किए पर उन्हें एक भी मौका नहीं मिला। उन बेबस पलों में जब सारे रास्ते बंद दिखे, स्वामी ने स्वयं पापा को दर्शन के लिए बुलाए और कहे, अरे दुन्ना पोता इकड़ किरा, कूतुर पुट्टी नंटा स्वामी चप्पने ले दू। अगले दिन पापा को संदेश मिला कि स्वामी चप्पारू पापा की कृष्णुड़ी अम्मा पेरु पेट्टमनी। तब मेरा नाम यशोदा रखा गया। बहुत जल्द मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। उस दिन से लेकर आज तक स्वामी आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। आपकी कृपा से मुझे श्रीमती ईश्वरम्मा हाई स्कूल में एडमिशन मिला, जहां मैंने हर कदम सिर्फ और सिर्फ आप ही के ओर बढ़ाया। अक्सर मैं सोचती थी मुझे ही क्यों चुना गया, और इस प्रश्न का उत्तर आज मुझे मिला है। ये नाम ये पहचान कभी मेरी नहीं थी स्वामी, ये एक ऐसा रिश्ता है जो एक माँ और बच्चे के बीच में हो। आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अगर हम एक कदम आपके ओर बढ़ाते हैं, आप 100 कदम हमारे ओर लेते हैं। धन्यवाद स्वामी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ने के लिए।
1: His presence, every moment becomes sacred. Every act of service transforms into worship. And every burden surrendered at His lotus feet gently turns into grace. Through every struggle, His compassion uplifted us and His love carried us forward, filling our journey with purpose, strength and hope. Today, with hearts overflowing in reverence and gratitude, we realize the immeasurable blessing of walking on the same earth that has been sanctified by His holy footsteps. Ententa punyamo ee pudami tallidi.